がりかな。いへらまへらまへらまい。まつわパンダバイワルケバイバネレキウタパキパラマッマ。サテジバシャパサリラジェウニレ。サテジバシャパサリヤダバハルウジョビプラカシラパレ。साराचिये भए प्रभासती रामा देखे जसै कृष्णले दिक्माने मनमा कुलचिये भयो जानु पर्यो लौ भनी सुरहारण होइ भविष्यनु पनि भयो दाजै बलराम पनि नारायण।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

राजा नौश का इशारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन सम

कैसार्या श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसारी ज्ञान हव शिशु जन्म मनुन बढ़ाले पनि कृति उज्ज्वल श्रुत सहित का।

मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दशु जोदायको फलचारी बुद्धिहीन दोन जानकी सुनिर पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलश विकार ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिश तिम्रो उजागर रामदूत अजुल दबल धाम अञ्जनी पुत्र पवन सुत राम महावीर विक्रम बजरङ्गी

मणिधि के दाता अस्वर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रव रघुपति के दासा तुम्हारी भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चिदन धरई हनुमत से ही सर्व सु करई संकट कटई मिर सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी माँ सुख हो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा किजनाथ हृदय महडेरा ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसवं स्वरूप श्री अवर रामचंद्र शंकर जी बाजा जय हनुमान जय बजरंग बली।